राम राम खो भजलो प्यारे सो जोई ना हो संग।

करो हरी जगत जगतार भजन करो हरी जगत जगतार भजन करो हरी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबकी दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती, तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

0: देखो तो आज क्या है किचन में, ये क्या? फिर से वही गोभी और वही आलू। आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए। कुछ नया भी तो होना चाहिए। रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो लू का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है। हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोई से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोई।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोई, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान।

0: और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूं। मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, गोभी के, गाजर के, मिर्ची में लाल टमाटर के।
1: हर दिन कुछ नया क्यों नहीं
0: मंत्री चंकी जी, हमारे महाराज कुबले रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
1: बनाते? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
2: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार शाही पकवान लाओ।
0: ये लीजिए महाराज।
2: आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ, मेरे पास लाओ, शाही रसोई।
0: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
0: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
1: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
3: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
3: महाराज घूमने की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
2: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे।

मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताती हूँ। अगर कभी आपके चूहे में नई नई चीजें खाने से

और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना

0: जदीद तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चिंकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
1: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
2: तैयार।
1: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे, लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
0: उगती है जमीन के नीचे, लंबी पतली सब्जी लाल।
1: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
0: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
1: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
0: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
1: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम?
0: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। समझ चमकी, मैं बताऊँ?
1: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
1: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब?
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
1: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। और सही जवाब। यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
3: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
4: अब्दुल रहमान।
3: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
4: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
3: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
4: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
3: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी

0: क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
1: मेरा नाम शांति है।
0: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
1: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
0: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
1: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
0: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ, हाय, आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
0: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
2: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
0: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ, हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
3: पालक।
0: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
3: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
0: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
4: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
0: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
2: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। पर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को खिलाते हैं।
0: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
5: बाय। मजा आया ना।

0: दोस्तों, मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था, यानी के गुगली महाराजा। भाई वाह, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: लोग जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक है, तो पालक भी नहीं खाते, तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर ले। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके

0: आपन को खाना चाहिए।
1: जी आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं तो, कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हो या छोटे बच्चे हो, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनी बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे ये एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है वो के अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है। तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के वो जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चला थेंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उनके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। कह के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

0: करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल वाया करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें

0: जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम जो पुजारी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट का फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी वहाँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तू से मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
0: अच्छा,
1: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
0: बिल्कुल,
1: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं, जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास

0: करती है, माँ की प्राकृतिक नेत्र है। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती है। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनाशे हु तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तप स्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति है वो सब दक्षिणावर्ती है, सब दक्षिणावर्ती है। और यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी आते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी चेटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक जी। पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व तो बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए, आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे हैं।
1: तो आपने तई के हो?
2: यही के हैं।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करते यहाँ जन्म लेके हैं ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।

0: है।
1: हाँ बहुत बढ़िया है।
2: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहां की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सो सुनते हैं एक और लोकगीत धन कुमार की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धनकुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है।

आप जरूर हमें बताएं 9425-1417-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने 9425-1417-26। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कुआ तो राजन के कुमार
2: आओ
1: और एक हते बाणिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हते राजा के कुमार,
1: एक हते बाणिया के।
2: हाँ, ये दो जने हो गए। हाँ,
1: अच्छी चास हो गए उनकी दोस्ती।
2: हाँ,
1: उनकी दोस्ती है सो अपने काम का तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह खून चले जावे।
2: दो करो
1: शिकार भी अपना घोरो मस्के भी अपना घोरो मस्के।
2: हाँ,
1: अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुम्हें फिर करना है।
2: अच्छा,
1: तो कल के दिन में भी बोले बोले कल ले बीरन बोले। अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे थे। अब राजन को बस बीरन है अपने बानिया कितने सिकत बीरन।
2: अच्छा,
1: हो बी है बादशाह, बीरन और बादशाह दोनों जने हो गए। कह के राजा हो बादशाह तो बस बीरन ने जैसे बार मार बनवाए, गाड़ी फाड़ी बनवाई, बार छटवाए, कले कबजा कांखी लानी छटे कले ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा,
1: अब जब नाव भोगो से नाव को रखते तो गांव भर को तो फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे।
2: जा सही कही आपने,
1: नाव को सब पतो है। तो नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने। सो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले का बोले कर ले ये राजन के राजा। बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम किसे चले जा रहे। अरे बोले कर ले राजन के राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउ की है नहीं ना।
2: अच्छा,
1: हाँ तो बस बोले कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा,
1: के नाव होगा बादशाह हो गए, बीजन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक ज्ञान कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो जब बीजन की ससुराल को गल गई और जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा,
1: गली में बटी लगी उन्हें लगी प्यास। तो राजन ने हुक्म दिलो चलो बीरन पिया पानी। तो बीरन का पानी पीवे के लाने तो बने बीजक बांचो।
2: अच्छा,
1: बीजक बांचो बाद में।

0: उनमें गली अलग अलग।
1: हाँ
0: गिरन हो बदमाश,
1: हाँ
0: गिरन बदमाश हो।
1: अच्छा
0: तो गिरन में का करो किस्ता के पानी पी के बावली में और वह बीजक खून भरा जाओ
1: ले उसका।
0: अगर हमारा गाय जो बीजक खून जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जो बाचे ले से सम छूट गो। इसे कह हम आज ससारे चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीन बजे
1: तीन बजे।
0: हाँ जा तो बीजन बदमाशी के रह जाओ तो बस अब राजा पानी पी लेगा। तो राजा ने पानी पिए जो तमाम बावली में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगा रहा। तो राजन ने अपने खोबन की उलीच उलीच के भाई
1: धो
0: जाओ और फिर उगे बाचो बाचो भाई सुबह ने उन्हें प्रधान पूरे लिखो कि जा राजन के तुम रखो रास्ता गई और जा बीजन के तुम रखो रास्ता गई दोनों जने तो वो लेकर लेकर वो बीजन बोले कहिए राजन के राजा बोले तुम बहुत बदमाश है बोले कल पुरखन को बीजक तेने बता दिया है हट कर ले के हम अपनी ससुराल देते तो बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
1: अच्छा
0: बोले कल जो पहले आगे विदा करा थे वो जिनकी बाउली पे ठहरे क्या जिनकी को बीत जाए
1: सही सही।
0: बस भी अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी सताई बक्का नाउ बोले कल जी राजन के संगे चले।
1: सही है
0: अरे हमारे वर के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं कल ठीक है। तो राजन की कुमार और सताई बक्का दो जने जा रहे भी अपनी ससुराल चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बनकली में पहुंची तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास।
1: अच्छा
0: बोले कल सुधाई अक्का बोले कल ये राजन के राजा कल हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सादा सही से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो। बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना पानी ना माँ पानी अपन वन में हेंगे। बोले कल अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के बोले कल हो महाराज सुबह का खैबर पर चढ़ी ऊपर देख के भी लम्बे जैसे ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चली तो ये कुत्ता दशा में बगली मर रहा रही। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी में चढ़ होगा
1: बिल्कुल
0: तो बोले कल्ला राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती है पानी जल्दी हो गए थे। बोली कल चल चल जा सुबह लोटा घड़ी ले के चल गया। अरे खुली जाए सुबह जन में दो पाई खुली से जीत गई की हाँ फिर बाहर आराम से दिन में चले गए। तो उतर काकिस्ता आते तो जानवर लड़की राजा ने खून भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही थी।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही थी तो सुताई अक्का ने कहा करो के झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल सताई का बोले कल कहिए राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ऐसे ठीक है तुम लिया बोले कल हाथ जाके ना पूछो पानी पी लो बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया होते ऐसा जल्दी हो थे कि मचो सचो भर के आ गया। बोले कल महाराज कल तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही है तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया है और हम खुद प्यास में मरी जा रहे हैं। अरे बोले कल बगरा गए पानी तो वो पानी बगरा के दो जने तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल सुधायक का बोले कल कहिए राजन के राजा बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूर है जब बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें ताला ताए को। बोले कल कहो उनने कही

0: अच्छा या, नाव कप्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जा,
0: राजन ने कही जा,
1: राजन ने कही जा बात। तो उनमें फिर कही उनमें, अब्बा बोले चल में ठाड़ी जो।
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: ये नहा रही बा बोल रही है।
0: हाँ।

0: सिंचाई आपका बोले कल्ले राजन के राजा।
1: हाँ
0: सुनो हमारी बात, अभी से बोल दो ना।
1: सही है,
0: अभी से बोल दो ना, बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ।
0: हैं
1: सही कही,
0: बोले कल्ले नहीं, अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो।
1: हाँ
0: भूले।

0: गलियां बाता दियो लगे कहू के इन्हें गली बता दो सो काऊ के द्वारे में
1: पहुंच जाए।
0: अब कहीं हाथ हाथ में अगर बता दीजिए अब जल के भीतर हुई अब इनको समझ में नहीं आएगी इनको जाए इनको बदल सही है कैसा मौका नहीं मायक है तो पूछते नहीं इंटायक है कई की अब जाइए से बताया तो निकल बाल माँ शंभा बोली।

0: जावाद मिल जाओ।
1: अच्छा
0: हाँ वाने मिली ना बताई न बान बदन काड़ो जल जमीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भी कर बस सावन में किसी गली तो पूछ ही गई गली पूछ के उन्हें घोरो बढ़ाओ सो गाँव के लाने तैयार हो गए। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्ली सफरो और सफर खोर के और बाप ने जेल चली जो ने जी हके से जात है भवन द्वारे छोटे लक्का को देखो तो ससरार सुबने द्वारे अरे उनने अब पहुंची घर पहुंची घर से भी घरवाओ को बंधो। अब भाभी से बोली भी ये घर

0: अब भाभी मन से उत्तर दे रही है।
1: अच्छा,
0: अब भाभी को उत्तर दे।
1: हाँ,
2: मुझे कान लाल दी ने

0: बिल्कुल
1: क्या तुम जब भागोगे कहीं ऊंचे कनेरा नंदी नीचे करो बातन जन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी याद है चालन
0: अब लुबग्गा आ गए तो
1: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज यहाँ तक तुम न बनाओ आज हम बने
0: ऐसा
1: भाभी से कही सुबह सुबह घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दी के लाने तैयारी के तैयारी कही अब इन दो महीने कही चला
0: अच्छा
1: बोली कर लो देखो अपन फोन कब्बा गेल गुमार बना दी
0: हाँ बिल्कुल
1: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी यहाँ और वाला कह जी
0: सही कह रहे
1: अब्बा खुला खुला थे वेरी खुलो
0: हाँ
1: में तो सलाह
0: हाँ।
1: दो जन की सलाह हो रही नाव

0: यो राजन की तो वासवती सुनने गंजन की भोजन बने तो भोजन बना के अज्ञा के गई भोजन के लाना तो दोनों जने भोजन खो गए भोजन खो गए साफ सुनने चाहे एक ने चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बना ठना में जवाब ठोको
1: अच्छा
0: हाँ ठोकने ठोकने ना तो भेज कैसे खोलेगा
1: सही है
0: जी।

0: 89 सरकार के मोय कच्चे अब अभी खुलवाओ के जय है या
1: हां सही कह रहे जब जय बात आई के होते
0: जय है तो जय जब बाय बब्बा ने बात खोली छु बोल समझ गए सो उनने मां ताठी माटी सरकार के हां ओ बस सुता जा कान पे झटपट जो कछु राजन तेजी से बाप बांधी
1: हां
0: अब बाप ने बांधी ओ बस ताठी माटी को कल कमे लग पा के कल काए कह रहा है बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल भाज मैंने अपनी ताठी धोई वो आपकी धोई और फिर मैं आया बोली कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घोरो कस के तैयार हुए इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जा रहे तो बस बेहती सो तैयार हो गए जहाँ से करा उनको और उन्हें भज्जा घोरो कसो सब रात में घोरो कस रहा सो गुरु कल को पहले चवाने पेट तने कस जाओ
1: अच्छा
0: वो पने चपीते दिन तो गई आगे बड़ी आगे
1: हाँ,
0: हाँ, ये करा क्योंकि कैसे
1: हाँ,
0: सवेरे भाग जाओ
1: हाँ,
0: तो बस जो राजा को हाँ साफ कल भी हो गए तो राजा का कल तो क्या है कि ऊपर का पलेचा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन भज्जा छोड़ छाड़ के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे तो बस बेहतर हो निकल के ओवरस्पोक करी तो भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने रोहा गाओ बने ये समझ पाते कोरे जेले

0: मेरे को रिश्तेदारी है
1: सही है
0: और जब तुम दिन चटकाओ और टूटे से जब जुड़े नहीं वो जुड़े से गांठ पर
1: गांठ पर जाए
0: गांठ पर ये जाओ तो बस भी रुकते
2: नहीं गए
0: टूके के गए जो बपरोस की
2: बपरोस की ने कही जवाब
0: तो परोसन ने सोची तो अगर हम भोजन कराओ तो केर वेर को संग है
1: सही है
0: डोल भर के जाओ तो उनने हतीसो जैसे कच्चे पुटिया पर नूत की वही रानास में ले गए
2: फिर कमाई खो पाया ले गए
0: मई खो वही जहाँ उनकी रानास थी वही फिर पहुंच गए भाई छतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन दें तो ये भूखे अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंचे तो लगा थाली जो छाजे पे चढ़ी गई तो बिस्किया पे रही थी भी सुबह बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर बोल गई बन गई और असल दो हाथ गया गई संकेत।

0: जी उन्हें शंख बजे से साधु जगे बम घरे अगर अगर इतने में के बम घर रहो
1: सही
0: वो नहीं जग रहो तो पूछ कब पूछे
1: सही है का हो
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जाए मेरी बिछोना का जाए
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास मिल भी गई अब बात फिर के जो आप कह रही है ऐसी

છે લાડા કી વાલી એસો નોવરી કે જાયજી. અરે એસી સાસો કા કામ કી હતી તેરી કુખન બાંજઈ હો જાતી. और वैसे सपूत जाए तो लड़की होती तो पड़ोस मिली पे ब्याह शादी कर देती तो वो रखी ये तो गड़ गया है ना सुबह पटक थार और भी भगिया है मैं थार पटक के में भगिया ही सुबह अपने बड़ी बड़ा रात को समझ जा कहाँ जा रहा है मैं सलीवा हूँ सोने घोरों मस्को उस चलिए तो ससुर साहब ने कही करी दीवान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहर आओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे हैं. ठीक है सुबह भी रहती है खाना खाओ खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कही हुआ उन्हें खाना पीना सब वो महीना भर के जाने रखता खत जब जो घर चले गई बस आवाज हती सो अपने हकावे बारे हती से जैसे गांव के बारे करी तुमने मार जताई तुम भी भक्के छोड़ के अब खुद ने हकाई अब सुताई अब काल है खबर जी ने हकाई सुबह हका के होगा सब कहीं ऐसी वर्ष चली हुई तो शाम हो गई से गंगा को पीड़ो रहे उतने बस गए शाम हो गई से बस गए बस के लिए अब वो निकल रहे सुनो सुधा कब निकल रहे का कल पापन को ही छोड़िया नहीं यही रुकता है अब्बा सुन रही थी बस सुन रही थी सो बाने गई के ठीक है सो सुता अक्का से गई के सुधा अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है तो पति लगाओ तो सुताई का वैसे तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को तीन पात में कहा खोलिया बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर भी मारे सो रानी की फार के मार फिर गए अब पास लग के आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई अब रानी ने सोची कि जो भगत तो हमें छोड़ के ही इसे का कहें जिस घोड़े की पछाई की ये रखी ये भगत बात बदूर.

लिखी तो बछोर के बाने की इस्तेमाल ली बदूर तो ये भगे तो जब ये सुनते समय यहाँ कदा हम सो गए आँख खुल जाए तो हमें इसे कचू किया ले सुबह सुनने थे उसे घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तने बदूर तने दूर सो नेक चाबा को अठो को घोरी उस बदूर पीटी सो उनमें कही रहते हैं रानी मैं

केना दिखती आ फल में बुझा गई हमें आ हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे अब सुनल बारे कैसे चले गए भी अपने भवन को चले गए अब रानी ने अति से कहा कि नस्खू भी घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी हकाऊ थे रानी तो हका से जैसे कचुअती से राजा गिलंड की बाग में जी जा रहा जा रहे सुवन में भैया घर वन में नाच के तूपी माई की बोलनिया तूपी बस भी अती जो रानी वो तो मालूम हटी से मालूम बोली बोली कर लेगी अरे कौन कहाँ की पाप नारी कहती है तुमने ये कुंवर रानी ने वो मालिन को दी तो नारी जी तो राजा की बहू में भीतर काट गई बाग में बीरा दे जाए अपने अभी तो राजा की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटा तो नहीं नहीं हुई तो बस बीरा जी तो अपने इंतजाम में अपने कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सो ऐसे कछु बिला दिना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन अब उनकी बेटी हटी राजा की यानी जमदीप नाव तो का नाव तू बेटी को जमती जमती नाव तो बेटी को सो दिन में दो फूलन की तरह तो लगती बा सो मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे सो राजा ने हकी सोची के अब मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमने आए सो बगीचा घूमन गए भी सोते बा राजन की लड़की वही राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है तो कोई राजा की लड़की तो वे जैसे कैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालूम से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ दो तो उनने डाली उन्हें लगाई रानी ने अब बादशाह ने अति से राजन की पिया नहीं होती बाबू नहीं होता कंकु अभी नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें खाली लगाई दो उन्हें परसों बिना की हवा कर रहे बिना की हवा कर रहे रानी उनकी बादशाह की सो बिन्ने सोची अगर बिन की हमारी खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा उन्हें हर सांस लगी तो बीरन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है तो नाव से पूछी जा हुआ बोले क्यों खवास रखा बोले कले कहिए राजा कले कारण कहा है इनको राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल्ले ये रानी को बन में छोड़िया है और भगया है तो उनने अति से घोरो उनने सजो और बीरम ने सजो और पहुंचे बोले कर ले चलो बताओ कि कौन छाड़ में छोड़ी तो जो दुख तरह छोड़ी थी बड़ी दुख तरेंगे गए दोनों जने नाव नहीं गए वे दो ही गए से बोले कर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी व पीनस की जो रास्ता थी बंद है सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंड की बाग में उड़ गए पहुंच गए सोने के लिए ठीक है उतरे जाकर उन्होंने कहा किस्सा करो कि डीरा जो जन्म गए सोने भैया

सुनो तो जी काकेरे, अपन खा जी बताए अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें कि आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया। दरस

0: तो भैया अबे सुनो अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है और अपन सज्जन ने सुनो है। अब अपन बात करते हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम
2: राम राम।
1: अपनो दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह हो दादा?
2: केना से पूरे पटक गए हम केना गिलाती गंगा ऐसी नवारी।
1: अबे आप दादा का करे तरफ
2: जी? हल्को हल्को काम करे अपने दो बच्ची देखे ना तरफ।
1: और
2: वर्कर हम खराब किए काम वाम हम कहते मेरे।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से सब कैसे विचार जानते तो जैसी समस्या है से अपने भोग रहे।
1: आप जो बता रहे थे बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगा और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे के तो देखो ना खाना मरा था एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ झूंग नहीं पाओ घूरे फिराज हर एक बात की मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे और समस्या है अपनी?
2: अब और समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें मोड़ा हम खा रहे
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ के जाओ।
2: हाँ बैठ जाओ जी ना आपसे पूछा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप का कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब जी बैठे अब ठीक नहीं है चला फिर लगे थे
1: दिक्कत है उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: रात में झेल सका तो बैठ वो है सीधी बात है पैसा से खर्च तो चाहिए। अरे कछुना तो 10-15 उसको तो खर्च है ही आदमी को वहाँ मान के चलो कछु ना कछु 10 तो उठा के सही जाते हैं।
1: दिन भाई आपको कैसे कटा था?
2: दो बच्चे उनका दिमाग लगा दे सुझारे अपने छाने बैठे बस।
1: अच्छा वो अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी?
2: हाँ फैली जी।
1: हाँ जैसे का आप बुढ़ापे की
2: बुढ़ापे मतलब
1: माना दिक्कत है आदमी का
2: दिक्कत तो जैसे कि नहीं होती नहीं है तुम्हें जो काल है जो नहीं बाज पाए हम मतलब और उसी नहीं दिखाते तगड़ा नहीं बाज पाऊ मुझे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सका तो खावे पीवे की आपकी का इस्तेमाल है?
2: आई पी को तकलीफ नहीं आ रहा मतलब जो घर में है तो खा रहा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है?
2: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत नहीं आया वो पापा जाना फेरी अरे पापा जी जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी से चाह रहा हूँ आदमी हमारे बच्चे जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जठाने न मिल गए दीवानी फिर मिल गए ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो सकती तो शांति हो सकती प्रेम हो सकती सब में बड़ा प्रेम प्रेम रहे तो उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आप

0: मकान सारे पैसा रेडियो मतलब बड़ा झगड़ा वो काम निकल
1: तो अपनो का के वो है रेडियो में जो भी आप सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चट जी और कैसे रहे चट जी आप का कहना चाहो सब जनन से आपको का के वो है
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब बाप मताई की सेवा करें
1: वही बात बड़ी बात शुरू से आप
0: यात्रा ना कथी
1: यही बात है आप यही बात पूछना
0: चाहूंगा
1: बता दो आप कि आपका क्या वो चाहत
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है बाप मताई को छोड़ा तो तुम्हारे वाले बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देवे बाल बच्चे चले जा तीर्थ यात्रा हुआ है अब पैसे मिले तो जाकर आ गए अरे मतलब चले जाए पैसे आ चले जाए अब जैसे पैसे नहीं मिला तो कहाँ जा रहा है क्या करे वो चीज खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं जाए पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
1: और का के वो चाहूँ आप
0: जी चाहूँ के आराम चाहूँ बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाऊ गए लड़का वाले अपने वाले बच्चे को समाज खाने दिए तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उनमें खाद चलाते
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है
2: तो देखो भैया अब अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम कर है और भैया ये तो बातें अपनी अब हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए तो अपन और सुनत है एक गीत को और ये गांव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं तो भैया अपन सुनो और सवई पंच भैया सुने।

तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जीखो गाड़े हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने। सब देवन में सबसे

हाँ तो भैया, अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम? सुनो जी काकेर है, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं। और ऐसे ही हम हर रविवार को लेके आउ थे ये कार्यक्रम को सुनो जी काकेर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करन चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया, हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तगेला के पास ओछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से। तो भैया देव आज्ञा, और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

0: पे आप आ गए थी वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में, और साथियों हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और सो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया को बोल रहे?
2: दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए गीत है मैया बैठी रतनगढ़ वाली।
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवा है जो गीत और कहा हो रहा अपनो।
2: बस बढ़िया है सर पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुकर
2: है। ठीक है सर
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब बहुने वाले हो गई पानी आने।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बंदली, मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
1: अरे गीत कोई गाओ थोड़ा। हाँ, बोल याद नहीं आ रहे।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।
2: लाल दुपट्टा उड़ गए बेरी हवा

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। तो जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार

नादिया भागा। भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। बिखर गया परिवार बात जा बनी बनाई में और सच जाने तिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

ऐसे खोल दिया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छवि मुख चंद विराज।

0: भोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम चला।
1: हेलो बुंदेलखंड नंबर 10 4 साल।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाई से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए हैं।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी,
1: नमस्ते। कचहरी

0: हेलो माता जी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें से वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कुछ प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवा दें।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल आप ऐसे चलो करोगे तो बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

हो गया हूँ दीवाना, गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से, जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगन प्रसन्न हुई देवी और कहना

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात भरी जिंदगी हम किया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: बाबा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना,
1: कितना
0: कल तलक तुम्हारा

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आ गए हैं, हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फोन व्हाट्सएप कार्यक्रम। और इसमें हमारे श्रोता साथी हमें कॉल करते हैं, अपने पसंद के गीतों को सुनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि इतने दूर दूर से हमारे श्रोता साथी जन हमसे जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। एक बार फिर से पुनः आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा लाइन अब खुल चुकी है, तो आप कृपया करके हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 9219207049 पर कॉल करके अपने पसंद के गीतों को आप सुन सकते हैं। नंबर एक बार फिर से पुनः 9219207049 पर आप हमें कॉल करके अपने पसंद के गीतों को आप सुन सकते हैं।

0: और जैसे ही हमने अपने फोन पर ये मैसेज या संदेश आपको भेजा, जैसे ही हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं श्रीमान जी?
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर?
1: महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलंदरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे सर जी।
0: क्या हाल चाल है ठाकुर साहब?
1: बहुत बढ़िया है, सोयाबीन की बुआई चालू है, बारिश हो रही है महाराष्ट्र में।
0: अब बारिश महाराष्ट्र से लेकर बुंदेलखंड में थोड़ा भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है अभी तक, बहुत उमस पड़ रही है।
1: महाराष्ट्र में उतनी भी नहीं, लेकिन हो रही है। अभी हमारे जो किसान भाई है वो बैठ रहे नहीं, वो पेर के ले रहे सोयाबीन कपास हल्दी, पानी हो जाएगी। रात को भी हुई थी, हो रही मगर दो हल्की हल्की।
0: यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो रही है ठाकुर साहब।
1: ऐसा आएगी आएगी आएगी,
0: जल्दी भेजो यहाँ पे, क्योंकि किसान यहाँ के परेशान हैं और बार बार लिख रहे हैं कि बारिश कब होगी बारिश कब होगी।
1: महाराष्ट्र में चालू है बारिश सर जी।
0: वहाँ से जल्दी भेज दीजिएगा आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पैक करके भेज देंगे बस।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: तेरी मेहरबानियां पूनम ढिल्लन पे चित्रगीत हुआ है, सावन के दिन आए ऐसे में पिया आजा, ऐसे गीत है। देखिए
0: सावन के दिन आए,
1: हाँ हाँ, बारिश का थोड़ा गीत है।
0: अच्छा,
1: ऐसे में आ जाओ पिया
0: साजनवा आन मिलो कि बलम झूला।
1: सावन के दिन आए ऐसे में भाया किधर दे, ऐसा कुछ तो भी गीत है वो। तेरी मेहरबानियां जाकिर शराब वाली,
0: तेरी मेहरबानियां,
1: पूनम दिल्लम पे चित्रगीत हुआ है।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत। और क्या कहना चाहेंगे सर?
1: सर बहुत बढ़िया है, भैंसा लेके आए हैं 12 बजे तक बनने के बाद में ट्रैक्टर आने वाला है 12 बजे के बाद। आ तो बोला जा रहे घर को, मैं बोला कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, जाए जाए तो 12:30-1 बजेंगे तो ट्रैक्टर आएगा, 1-2 बजे हो जाएगी पेरनी हमारी।
0: अच्छा,
1: हाँ सोयाबीन बोने का है सर जी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप सोयाबीन बो रहे हैं आज?
1: हाँ बहुत कुछ, हम भी अकेले नहीं, बहुत है ऐसे बोने वाले आज। हमारा गांव 800 एकड़ जमीन है, हमारे गांव में 800-1000 एकड़ के आसपास, तो आज कम से कम 200-300 एकड़ हो जाती है आज कल परसों के दिन में, 2-3 दिन में।
0: अच्छा,
1: हमारे गांव में बस्ती में 1000 एकड़ जमीन है।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत सर।
1: थैंक यू, धन्यवाद सर जी,
0: धन्यवाद। श्रोता साथियों, यदि आपको भी इस तरीके के गीत सुनना चाहते हैं, पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 9219207049 पर। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

क्या पीरियड्स के कारण इचिंग और

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मनीष भैया जी, शारद सप्रेम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारद प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ, बुंदेलखंड ओरछा पर आ रहे मनीष भैया से। मनीष भैया आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे, तंदुरुस्त है, खुशहाल रहे।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद, मैं आपकी अपेक्षा के अनुसार स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ग्रीष्म ऋतु का आनंद ले रहा हूँ।
0: बताइए कौन सा गीत सुनोगे आज?
1: जी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है झमकांटा, रफी और आशा जी ने गीत गाया है।
0: कौन सा गीत सुनोगे? क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने गीत को चुना है। आशा भोसले ने और मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को गाया है। आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत सर।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं सर? हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो आवाज आ रही है?
1: हेलो
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: हरिओम बोल रहा
0: हूँ। हरिओम, कहाँ से बोल रहा है?
1: निवाड़ी से।
0: बताओ कौन सा गीत सुनने?
1: कचरिया
0: है। कौन सा बुंदेली गीत है जो? कचरिया
2: कचरिया तो रो बिहारी टिकट कर ले आवे।
0: कचरिया तोरे ब्याह में
2: टिकट कौन ले आवे?
0: और सब बढ़िया?
2: हाँ सब बढ़िया।
0: कचरिया तोरे ब्याह में, चलो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का जो गीत।
2: हाँ
3: बुद्धि दाग निकलेंगे सर्फ एक्सेल मैटिक से।

0: कचरिया।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
2: जी भैया नमस्कार।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जी भैया हम आपके नियमित श्रोता योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश भैया, हाल चाल कैसे हैं आपके?
2: बढ़िया है भैया, काफी अच्छे हैं।
1: बढ़िया है, बारिश वारिश हो रही कि नहीं वहाँ छत्तीसगढ़ में?
2: नहीं हो रहा है भैया अभी तक तो।
1: महाराष्ट्र में सिर्फ बारिश है, इतने भी नहीं हो रही बारिश।
2: जी जी बहुत इंतजार है भैया।
1: बिल्कुल, बताओ कौन सा गीत सुनो आज?
2: फिल्म द ट्रेन से सुनवा देंगे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: बिल्कुल सर, ये 1970 में ये फिल्म आई थी, मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को गाया है। द ट्रेन मूवी का ये गीत है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
2: जी जी,
1: आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत सर।
2: शुक्रिया।
3: ये और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार, विजय जी बोल रहे हैं उज्जैन प्रसाद से।
0: जी विजय भाई साहब, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया है, गर्मी भी अच्छी पड़ रही, बादल भी ऐसे दिख रहे हैं तो जैसे आ रहे उजाले। लेकिन क्या भी की नहीं, गर्मी भी बहुत है, आज तो हवा चल रही ना तो बहुत ही उमस पड़ रही, नहीं पड़ रही?
0: बिल्कुल बिल्कुल, कहा गया वो चाहते हैं उमस की लाने आप।
1: अब देखो क्या वो तो जो जानते हैं कितना ठंडक हो जाए, अब कल से आषाढ़ भी लग रहा हो, आज जा रहे आज पूर्णमासी है, कल से आषाढ़ को महीना लग रहा हो, लेकिन अपने हिसाब से तो 22 जून आप तरह लगाई गई है।
0: सही बात है,
1: आधी कर गई
0: बिल्कुल
1: भाई। तो कह रहे तो मौसम हो जाए तनक के खेती किसानी भी हो जाए, किसानन की तनक बाद में अपने काम में लग जाए आदमी।
0: बताओ कौन सा गीत सुनो आज?
1: प्रेम रूप फिल्म को सुनवा दो, टाइटल सॉन्ग मैं हूँ प्रेम रूप।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद को जो गीत।
1: नमस्कार।

0: एक और हमारे साथी कुलदीप सिंह जी जो जान सकरार के हैं, आपने फरमाइश की है कि हमें गीत सुनना है, बहार हो फूल बरसा हो मेरा महबूब आया है। फिल्म सूरज 1966 में ये फिल्म बनी हुई थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गीत को सुनते हैं।
1: रू गोल्ड एडिशन नया है क्या?

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्ते, प्रणाम करता हूँ, संतोष कुमार राव उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी संतोष भैया, हालचाल कैसे हैं उमरिया में?
1: बिल्कुल सर, इस समय बारिश हो रही है उमरिया में और गर्मी से निजात मिल रहा है और इस समय खेती बाड़ी में लगे हुए हैं सर।
0: यहाँ पे आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, यहाँ पे क्यों नहीं भेज रहे हो बारिश?
1: अभी सर से कामना करते हैं सर कि बहुत जल्दी आपकी ओरछा में भी पानी की बूंदे पड़े,
0: क्योंकि यहाँ पर एक बूंद नहीं पड़ी है। रोज मौसम बन जाता है लेकिन किस कारणवश चला जाता है, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं।
1: जी सर बिल्कुल, क्या होता है ना सर, जो मौसम होता है जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा तादाद में होते हैं मौसम वही पहुँच जाता है, और जो हमारा घनत्व बस्ती होता है खास करके ओरछा राजा राम मंदिर है और वहाँ पे भगवान का भी कृपा है, बहुत जल्द पहुँचेगा वहाँ पे सर।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये बात यथार्थ सत्य है कि जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होंगे वहाँ पर मानसून बहुत अच्छी तरीके से आता है और समय पर पहुंच जाता है।
1: जी बिल्कुल सर, और मैं बताऊँ आपसे, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ पे घने पेड़ वाले क्षेत्र है ना, आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पे बुंदेल बघेल खंड है, खास करके बघेल खंड पहाड़ों से घिरा हुआ होता है सर, इसलिए सर यहाँ पे बारिश होती रहती है।
0: यहाँ पर सर आपके यहाँ बघेल में कुछ अलग भाषा, चूंकि यहाँ पर बुंदेलखंड में मिक्स रहती है बुंदेली हिंदी का, वहाँ पर बघेल में ऐसे कुछ भाषा का

0: किया जाता है मतलब बगली भाषा में।
1: हाँ हाँ सर, ऐसा ही होता है। जैसे अभी ये कार्यक्रम जा रहा है ना, तो कार्यक्रम सुनने वाले सगले पंचन का हमार प्यार भरा अभिवादन रही, और साथियों इस समय कहे कि दोपहर के मौसम आए तो अपन खेती बाड़ी में लगे हुई है, तो सबको से अनुरोध यह है कि थोड़ी से छाव में ही आके विश्राम कर लिया है। ऐसे भाषा का प्रयोग होता है सर यहाँ पे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी भाषा है आपकी बघेल भाषा।
1: आपके भी सर बुंदेलखंडी बहुत ही प्यारी लोग भाषा होती है, और सभी भाषाओं का हमें मान भी रखना चाहिए, और हिंदी जो अपनी भाषा होती है वो सबको समाहित कर देने वाली होती है।
0: बिल्कुल सर, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज फरमाइशी कार्यक्रम में?
1: जी सर, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मूवी का नाम है हम है राही प्यार के।
0: जी,
1: मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना।
0: अच्छा, और सब बढ़िया है?
1: और तो सब बढ़िया सर। और बताऊं आपसे सर, अलका याग्निक जी और रही थी, 23 जून को उनको सम्मान प्राप्त हुआ है, खास करके पद्म भूषण से सम्मानित माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने किया है, तो उन्हीं पर ये फरमाया, मतलब उनका गाया बहुत ही प्यार सा लोकप्रिय गाना रहेगा, और उनको यह गाना हम उनको मतलब शुभकामनाएं देना चाहती थी इस गीत के माध्यम से।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपकी इतनी अच्छी सोच है, वास्तव में काबिले तारीफ है आपकी, कि आप सभी का ध्यान रखते हुए, चाहे वो किसी की पुण्यतिथि हो या फिर जन्म जयंती हो, आप सभी को याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।
1: बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत आभार है कि रेडियो बुंदेलखंड ओरछा जो हमारा कार्यक्रम होता है ना, ये फोन इन कार्यक्रम होता है, जो आपकी प्रस्तुति होती है बहुत ही खास होती है सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए आपके पसंद का ये गीत सर।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, क्या हाल चाल है?
1: अरे बहुत अच्छे हाल चाल है। इस समय
0: पानी वानी बरस रहा हूँ क्या? नहीं,
1: अरे नहीं, गर्मी का लुत्फ उठा रहा है।
0: गर्मी को लुत्फ, क्या बात! गर्मी का लुत्फ और रेडियो बुंदेलखंड का लुत्फ,
1: बिल्कुल दोनों उठा रहा है इस समय।
0: बताओ कौन सा गीत सुनने अपन को?
1: फिल्म का नाम जवाब।
0: जी
1: आजा मेरी जान, ये जून का महीना।
0: अच्छा
1: जी,
0: बहुत बढ़िया आपने चुना है।
1: जी सर जी,
0: और सब बढ़िया?
1: और सब बढ़िया।
0: और फिर कब आ रहे हैं आप?
1: अब देखो जब मौका लगेगा तभी आते हैं।
0: ठीक है साहब, आपको सुनवाते आपके पसंद का जो गीत।
1: नमस्कार धन्यवाद।
0: नमस्कार धन्यवाद। आपको भी इस तरीके की गीत का आनंद लेना है, लुफ्त उठाना है, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 9219207049 पर। इस पर अपने पसंद के गीतों को सुन सकते हैं। एक और साथी हमारे, चूंकि झारखंड से आप लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी आपको मेरा नमस्कार। फिल्म आखिर क्यों दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है पसंद करता है। दादा बाबू रोड गिरिगेट झारखंड से, मोहम्मद यासिन, अनजान, सायमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत। इसके बाद इस गीत को हम जरूर सुनवाएंगे आप।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
1: राम राम भैया।
0: राम राम भाई साहब।
1: मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला, राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी भाई साहब बताइए, क्या हाल चाल है आपके?
1: हाल चाल तो भैया जी बढ़िया है, मस्त है, व्यस्त है, स्वस्थ है, बिंदास है, और हम यहाँ हमीरपुर चोपड़ा मंदिर में घूमने आए।
0: जी बताओ कौन सा गीत सुनने जब तक आपसे बात हुई है?
1: गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ है ना यहाँ जी, तो बस वही संगम तीनों नदियों का। गंगा जमुना से नाचे मेरी, नहीं नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती, सुन गंगा सुन
0: सरस्वती,
1: गाएगी सरस्वती जी।
0: क्या बात है, और सब बढ़िया?
1: सब बढ़िया सर जी, आपकी कृपा है।
0: फिर कब आ रहे थे?
1: बस जामने थोड़ी हो जाए और आम लेकर आ रहे।
0: चलो आम के हम इंतजार करें आपको, फिलहाल मैं आपकी पसंद को जो गीत सुनवाते हैं आपको।
1: दो मित्रों के नाम ले लें।
0: स्वागत स्वागत भाई साहब, आप ही के लाए तो हैं।
1: बलवान सिंह यादव जी हैं, अनूप कुमार राजपूत जी हैं, आदरणीय सम्मान्य शारदा प्रसाद जी हैं, टेक चंद्र अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, राम शरण विश्वकर्मा जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं जो आपका कार्यक्रम दिल से सुनते हैं।
0: रघुवंशी जी फोन नहीं करत लेकिन
1: कहेंगे करेंगे करेंगे।
0: ठीक है साहब, ठीक है।
1: राम राम भैया।
0: राम राम भाई साहब।
1: राम।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं इस फरमाइशी कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
1: सर हम पंकज सिंह बोल रहे हैं।

0: जी कहाँ से बोल रहे हैं पंकज सिंह जी?
1: हम बोल रहे हैं सर जावन सतनार से।
0: जी बताइए पंकज सिंह जी, क्या हालचाल हैं आपके?
1: बस सर बहुत बढ़िया है, गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय।
0: बहुत ज्यादा पड़ रही है?
1: जी सर।
0: क्या बात है, बस गाने सुनते रहिए और गर्मी का आनंद लेते रहिए। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सर हम गाना सुनना चाहते हैं बागी का, लो सफर शुरू हो गया
0: है। लो सफर शुरू हो गया है।
1: हाँ कुछ मेरे साथी भी हैं।
0: बिल्कुल स्वागत है, नाम ले लीजिएगा।
1: जी नाम है इसमें एक प्रतीक्षा
0: जी
1: और बिट्टू
0: जी
1: और मैं
0: जी
1: और एक जितेंद्र सिंह।
0: ठीक है, आपके सभी लोगों की फरमाइश पर ये आपके गीत को हम सुनवा रहे हैं। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू।
2: I need your help. Please help me. मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे?

0: इसी के साथ साथियों, बस हमारे इस फरमाइशी कार्यक्रम का आखिरी गीत हम फिर से आपको याद दिला दें। हमें व्हाट्सएप पर एक साथी झारखंड से आदरणीय प्रसारक जी मेरा नमस्कार पहुँचे। आखिर क्यों फिल्म का गीत है। गीत के बोल हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। पसंद करता दादा बाबू रोड गिरी ही झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान सायमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहमद जी। इससे पहले एक और साथी का हमारे पास कॉल आ रहा है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेश यादव बोल रहे हैं, बस स्टैंड लिवरी जिला महोबा
0: जी। राजेश भैया क्या हाल चाल है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया नहीं भाई,
0: बढ़िया है,
1: बढ़िया है, बारिश नहीं हो रही।
0: अरे बारिश क्यों नहीं हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, अपने यहाँ बारिश नहीं हो रही है बुंदेलखंड में? बारिश महाराष्ट्र तरफ ज्यादा हो रही है, बारिश यहाँ पर बहुत ही कम, अपने यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, मतलब जून का पूरा महीना निकल गया है।
1: हिमाचल में ज्यादा बारिश हुई।
0: हाँ हिमाचल में भी हो रही है। बताओ कौन सा गीत सुनो अपन
1: आज? सुनवा दो मोहरा फिल्म
0: टिप टिप बरसा पानी। फिर बरस जाए पानी,
1: आज बरसे पानी सुन मोहरे भगवान शंकर जी।
0: चलो चलो आपके पसंद का जो गीत सुनवाते हैं आपको।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नहीं भाई साहब, राम राम।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बस आखिरी गीत, चूंकि हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं, हमें मजबूरीवन इस गीत को लेना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हर खुशी कभी दिल के करीब नहीं होती,
0: क्या बात है।
1: जिंदगी कभी गमों से दूर नहीं होती, और रेडियो बुंदेलखंड जैसी दोस्ती कभी हर किसी को नसीब नहीं होती।
0: ओहो, आपने दिल जीत लिया। वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बताइए, आप तो हमें जरूरत से ज्यादा भी स्नेह करने लगे आप।
1: बिल्कुल सर जी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर
0: जी। आपका आपका स्नेह और आपका बड़प्पन, आपका प्यार हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं ये।
1: जी बिल्कुल सर जी, और आपसे मेरी बहुत दिनों बाद बात हो रही है। और सर ऐसा जी हो रहा कि मैं छिंदवाड़ा में रहते हुए आज बुंदेलखंड आने की स्थिति हो रही है मेरी।
0: क्या बात है, फिर आइएगा, स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर जी।
0: जी बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तो सर जी, आपसे मेरी बहुत दिनों बाद बात हो रही, तो मैं एक गीत ऐसा है कि मैं आपके लिए सुन रहा हूँ इस गीत में, और कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करूंगा, ये विशेष तौर में आपके लिए रहेगा। मगर
0: जी बताइए।
1: तो सर मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है आंदोलन, और गीत के बोल रहेंगे सर जी। कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे थे।
0: कितने दिनों के बाद मिले हो
1: जी सर,
0: अलका याग्निक की आवाज में।
1: जी सर बिल्कुल सर जी, और आपसे मेरी बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही थी, ये सबसे पहले तो गीत मैं आपको ही डेडिकेट करूंगा।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, यह खुशी भी हो रही है कि आप लोगों का इतना स्नेह और इतना प्यार मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ।
1: और हमारे राजू भैया भी पर्दे के पीछे बैठे हैं, वो भी आपका कार्यक्रम का आनंद ले रहा है, और रामचरण विश्वकर्मा जी सर, इनको भी डेडिकेट रहेगा।
0: ओहो, क्या बात है राजू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। जी थैंक यू सर,
0: थैंक यू। सुनो आपकी पसंद का ये गीत
1: जी। थैंक यू सर,
0: धन्यवाद। साथियों, इसी के साथ हमारा फरमाइशी कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है, और हम क्षमा चाहते हैं जो भी हमारे श्रोता साथियों की फरमाइश रह गई है। हम बुधवार को पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि बुधवार को 12 से 1 के बीच में आप फिर से पधारिएगा, फिर से आप सुनिएगा आपकी पसंद का ये फरमाइशी कार्यक्रम। तब तक के लिए आपकी अर्जी मनीष लेते हैं, दानी की इजाजत, नमस्कार।

0: जिद्दी दाग निकलेंगे सर्फ एक्सल मैटिक से फर्स्ट वॉश में।
1: फर्स्ट वॉश में
2: क्या पाउडर वाले ये मानेंगे? इम्पॉसिबल।
0: पाउडर वाले हैरान होंगे क्योंकि सर्फ एक्सल मैटिक लिक्विड की इंस्टा स्टेनफुल टेक्नोलॉजी निकाले जिद्दी दाग फर्स्ट वॉश में, हैरान कर डाले।
3: आज फुर्सत का स्वाद भी चख लो अब सिर्फ 50 रुपए में। वाहताज

Jungle may be tuned to Wi-Fi. They call but not.

जो करते हैं हर इन्वेस्टमेंट, हर डिसीजन, हर नंबर को डबल चेक, उनकी टैक्स फाइलिंग की हर जरूरत को क्लियर टैक्स करता है डबल चेक। इंपोर्ट करो सारा इन्वेस्टमेंट डेटा एरर फ्री। क्या LTCG, क्या STCG, क्लियर कट, पिछले साल के नंबर्स, प्रिसाइज, यानी फाइलिंग ऐसे जैसे एक ही बार में सब, डबल चेक, क्लियर टैक्स, इधर नहीं तो किधर।

0: गए आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक।
0: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। तन मन की हानि हो भारी है।

की अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
1: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है।

0: ऐसे खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
1: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यवसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यवसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
0: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
1: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के शायद युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
3: जी,
2: चना
3: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी,
2: तिल का तेल है
3: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, चूंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
3: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
3: बिल्कुल सर।
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
3: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
3: जी।
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
3: जी।
2: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
3: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
3: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके स्व स्वावलंबन में आए
3: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
3: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है,
3: बिल्कुल सर,
2: तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
3: जी,
2: जैसे बेसन है
3: जी,
2: दलिया है
3: जी,
2: यहाँ बुंदेलखंड का कटिया गेहूं बहुत अच्छा है,
3: बिल्कुल सर।
2: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के

0: इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
1: जी।
0: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या PO होता है
1: जी।
0: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके की हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं। लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर
0: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
1: जी।
0: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गांव में लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
1: जी।
0: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है।
1: घर में है, बिल्कुल।
0: अगर चावल की बिनाई कर ले,
1: पाइप
0: बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
1: जी,
0: दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले
1: जी,
0: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चना के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, तो इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी
0: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
1: जी।
0: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है
1: जी।
0: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग चूंकि 60-70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
0: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती है। क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख लें तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है। यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, MP के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
1: जी।
0: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
1: जी
0: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी,
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस चूंकि दूसरी चीज सर आती है, प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से

0: कार्य करें और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
1: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है, गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है, सिर्फ आंखें खोलने

0: जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो, दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है ऐसे कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं, तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है, तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तिगेला के पास ओछा। से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारी युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मरीज को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारी भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो देऊ करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही मतलब काया तुम बात कर रहा था अपने साथ
1: नहीं नहीं हमारी भी नमस्कार पहुंच जावे सभी अच्छा। श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ, वो तुम हमारे
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचत हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: हाँ, और हमें मतलब जो जानकारी देंगे नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ई बात को तुम्हें बुरा लगो हुज्जे सो तुम बीच में हमारी बात काटन लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होते हैगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछत हैंगे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते आप इतनो ज्ञान जब बोलत हैंगे तो ऐसा लगत के कितु बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और बोलेत हुए अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये
1: और...
0: यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे
0: हाँ हाँ।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देवे जा रहा है तो आप हिचकिचात होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था जी चीजन को सीखे में यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देने है वो तो नौकरियन में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे
0: मतलब हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही है इसको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बतावो चाहते हैं
0: फोन तो उठा लो पहला वो
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन हम अपने साथियों को बताबो चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो ये बहुत बड़ी चीज रहती है जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्ते जो सीख मिलत हैगी उनके जो अनुभव रहते हैंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेंगे
0: अब फोन कटगा आप काय में से उठा रहे
1: चलो हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं
0: तो बात तो हम ही करें आप खोना करें
1: चलो आप ही कर लो रूपा जी का फोन है वो आप ही बात करें
0: हाँ ठीक है हेलो नमस्ते
2: नमस्ते रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया है टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए है तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं
2: हाँ।
0: तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या
2: हाँ जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय

0: जी
1: वहां पे हमने 1 महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहां से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहां से फिर सिलाई सेंटर खुला। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
1: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं।
0: जी तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
1: हाँ, वैसे गांव गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना, समूह से उनसे
0: जी
1: हमने संपर्क किया। तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह, नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर 1 महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे। हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: जी तो आपने जब अप्लाई किया था, वहां पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
1: नहीं, फ्री में सीखा।
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे
1: नहीं,
0: नहीं
1: कोई
0: लगे थे?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
1: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें 2 पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे और बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे और बस 2 पैसे मिले, हमें 2 पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना
1: धन्यवाद।
0: चाह देंगे कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
1: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में 1-2 बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
1: हाँ, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे,
0: अच्छा, आगे
1: बताए।
0: बढ़ाएंगे।
1: हाँ,
0: जी बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी तो। ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें कोई लोग हमें देते हैं कपड़ा, तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ, ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या
1: नहीं है,
0: लड़कियां?
1: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी, बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम, आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो, कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे दीदी।
0: जी तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं
0: जी,
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
0: जी जी
1: कल कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
1: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज, तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब।
0: जी
1: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है,
0: जी
1: तो हमें जानकारी हुई।
0: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
1: नहीं किया अभी, नहीं 1 महीने में नहीं हमने किया
0: जी,
1: अभी चल रही शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
0: अच्छा 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
1: हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती है, ब्लाउज है,
0: ये चीजें आप बना लेती हैं?
1: हाँ यही 2-3 चीजें बना लेते हैं।
0: अच्छा इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
1: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
0: अच्छा तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा कि लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
1: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
0: अच्छा
1: तो अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर होगा टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं ताकि हमें आगे बढ़े।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
1: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता कि हर गाँव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे, अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
0: जी,
1: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब अच्छे जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
0: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
1: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
0: जी तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
1: मैं तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें पढ़ाओ ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़।
0: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती है।
1: लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
0: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं जो बहनें हैं और वो

0: करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
1: इसलिए सोच रहे हैं लेकिन गलत सोच है वर्षा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे यही की यही रह जाए, सोच गलत है। आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
0: देखिए रूपा जी एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस यही कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल रूपा जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई सब मिलके चलते रहे और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
0: जी बिल्कुल रूपा जी आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छी बात, धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: काहे बार साथ हम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हाँ,
2: हम सोच ही रहते हम हमें आज कौन सा व्यवसाय दें कौन सा व्यवसाय दें और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके कैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है शुरुआत कर रहा है तो उसके लाने ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ा थे, उसके नाने मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही। वाह धन्यवाद।
0: अरे मनीष भज्जा सबसे बड़ी बात पता का हैगी जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना सीख भी वो बहुत है ना नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहते चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबे को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करबे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगत है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती, हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बना वो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से

0: आप बना वो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छे तरीका से बना वो आते हैं तो। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी, अब तो
0: हाँ
1: नक रुक जाओ और हमारे साथ यहां हो, तनक सांस लेन दो और जो लोकगीत सुनन दो नखो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी। तो हमारे साथ ही कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे
0: हाँ
1: और
0: मतलब
1: ज्ञान
0: तुम
1: दे
0: तो
1: के।
0: मैं
1: नहीं
0: बोलन दो सो कछु नहीं है,
1: नहीं
0: तुम
1: नहीं
0: बोला
1: अपन
0: तराओ।
1: एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेतेंगे और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियन को जो नौ नौ सो गजल खो, अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथी रहो, फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे गो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम ही दे सकते होगे, कहे गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथी
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे है? जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ, और
1: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जानत
1: है,
0: है
1: नहीं, जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे है इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड का लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखो डाउनलोड करो और चाहे जितने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखों सुन सकते हैंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने आप डाउनलोड जरूर करबे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की

हर बार यही शिकायत रहती है कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर ले रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जितने चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सका थे सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो काहे कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमाई गांव हमाई सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा, तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।

0: भी राज से मिला आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: जो भी राज से मिला आरक्षण वो हमको

0: आरक्षण वो हमको अपनाना है।
1: पंचायत से संसद तक,
0: पंचायत से संसद तक
1: बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है।

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: घर से पंचायत तक,
1: घर से पंचायत तक,
0: हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों, हम सबको

0: हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुज्जे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: चंदन जी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
6: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम

0: पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गांव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हूँ तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
1: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
0: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन करते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पर तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाओं तैयार करते हैं, इसमें अब जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद उस पर कैसे काम किया जाए, देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, ये सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं किस आधार पे कहाँ पहुंचना है, ये निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति या स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है। अगर आप देश के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पे देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजनाएं ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पर किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के, तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है,

पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है।

0: लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
2: पंचायत की।
1: गांव में किते किते और का काम हुजे जो तय को करे?
3: ग्राम सभा।
1: 100 साल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
2: ग्राम सभा की।
1: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने।
4: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। आप तो दोस्तों समझ गए होंगे, आप एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उनने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी, अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए, तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए, नाली का काम ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है, ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है और पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभाएं होती ग्राम सभा में प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, साहब हमारे घर में शौचालय बनाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में, आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है 9425147726। तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

शेर वो पढ़ रहे हैं जो फिल्म में, जो अखबार में नहीं है।

0: हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब है, उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
1: जन्नत रंग

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथियों, काफी दिनों से हम इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी आने वाले समय में अपने कृषि में बदलाव की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती किसानी में बदलाव किया जाए ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं, जब तक हम कुछ नया नहीं करते हैं तब तक हम जो हम लागत लगाते हैं और उसका खर्चा होता है वो मिला जुला रहता है। तो हमें ऐसी खेती, ऐसी पद्धति के लिए आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा ताकि हम एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं अपनी खेती किसानी में। हमारे बहुत से युवा साथी जो खेती पर निर्भर भी रहते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे किसान साथी खेती पर निर्भर रहते हैं और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम दो फसलें वो करते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन फसल रहती है उसको भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये दो फसल, एक तो गेहूं की फसल करते हैं, एक धान और मूंगफली की फसल करते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि दो फसलों में किस तरीके से गुजारा चला जा सके। तो आज एक नए विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और ये बड़ा समझने वाली बात होगी किस तरीके से इस पद्धति को अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग ला सकते हैं। कई हमारे ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो नई नई पद्धति से अपनी खेती को कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासतौर पर अगर इस तरीके की हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, हमारे पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। तो आइए पहले सुन लेते हैं इस चर्चा को।

0: एरोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी के इस्तेमाल के बिना फसल को उगाया जाता है। इस तकनीक के जरिए पौधों को उगाने के लिए हवा या धुंध का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को हवा में लटका दिया जाता है और पोषक तत्वों के घोल को सीधे उनकी जड़ों पर छिड़का जाता है। क्योंकि इसमें मिट्टी शामिल नहीं होती, इसलिए मिट्टी जनित रोगों और कीटों का खतरा काफी कम हो जाता है। एरोपोनिक खेती ग्रीन हाउस में की जाती है, जिसमें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता सहित बढ़ती परिस्थितियों पर सटीक नियंत्रण संभव हो पाता है। एरोपोनिक विधि से उगाए गए पौधे अक्सर मिट्टी में उगाए गए पौधों की तुलना में तेजी से बड़े होते हैं।
1: ये जो टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक्स, ये जो नासा है, जो अमेरिका की एक संस्था है नासा, उसने इसके ऊपर कुछ साल पहले काम करवाया था अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जो एस्ट्रोनॉट्स, उनके वैज्ञानिक जो स्पेस में जाते हैं, तो उनका सोचना ये था कि स्पेस में, क्योंकि उनको ताजा भोजन, खासतौर पत्तेदार जो लेटस वगैरह है, वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था कि थोड़ा सा पानी उनके पास होगा, कुछ बीज होंगे, और वहां पे जो जड़ों के ऊपर स्प्रे करके वो खुराक दे के, तो इस तरह से कुछ ताजा भोजन पैदा कर सकते हैं अपने वैज्ञानिकों के लिए। उसी जो प्रिंसिपल को, उसी जो एक तरह सा जो एक साइंस का प्रिंसिपल है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये एरोपोनिक्स का विस्तार, इसका जो कहिए और साइंस इसके ऊपर की गई है, खोज की गई है, ताकि उसी जो प्रिंसिपल को, उसी विधि को आलू के लिए यूज कर सकें, आलू के लिए इस्तेमाल कर सकें।
0: एरोपोनिक खेती की तकनीक दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। खास तौर पर शहरी वातावरण या उन स्थानों के लिए ये तकनीक आदर्श मानी जाती है जहां स्थान सीमित है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके पास अपने छोटे से बगीचे या छत पर कोई जगह है, तो आप उसका इस्तेमाल अपने भोजन को उगाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी आधारित खेती की तुलना में खाद्य उत्पादन

0: की टिकाऊ विधि 80-90% कम पानी का उपयोग करती है। मिट्टी की अनुपस्थिति, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की ये तकनीक खेती के भविष्य के रूप में उभर रही है।
1: कृषि के क्षेत्र में कृषि संस्थानों और तकनीकी मार्गदर्शकों की जो भूमिका है वो हमेशा से ही काफी अहम रही है। नई मशीनों की बात हो या फिर आधुनिक तकनीकों की बात हो, इनके बारे में जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने में इनका हमेशा से ही अहम योगदान रहा है।
0: एरोपोनिक का सीधा सा मतलब है हवा में उगना। एरोपोनिक सिस्टम में कोई माध्यम नहीं होता है, क्योंकि पौधों की जड़ें खुले जड़ क्षेत्र के वातावरण में स्वतंत्र रूप से लटकी रहती हैं। एरोपोनिक सिस्टम के विकास कक्ष को पानी, पोषक तत्व और हवा की आदर्श मात्रा प्राप्त होती है।
2: किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, आलू, गेहूं और धान के बाद तीसरे नंबर पे जो फसल है, जो हम लोगों के भोजन का एक हिस्सा है, और बहुत मात्रा में आलू का हमारे खान पान में इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 60 मिलियन मैट्रिक टन्स, या ये कहें कि 600 लाख जो टन आलू इस कंट्री में, इस मुल्क में पैदा किया जाता है, और 60 मिलियन मैट्रिक टन का जो आलू जो पैदा करना है, तो लगभग 7-8 मिलियन मैट्रिक टन्स जो हमें बीज की जरूरत पड़ती है। इस बीज को पैदा करने के लिए जो रिवायती सिस्टम है बीज पैदा करने का आलू का, जो कि आज भी चल रहा है, जिसमें वैज्ञानिक लोग सबसे पहले ब्रीडर सीड पैदा करते हैं, उसके बाद फिर फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, और उसके बाद सर्टिफाइड बीज पैदा करके किसानों तक पहुँचाया जाता है। वो जो बीज है वो कई सालों से वो बीज बन रहा है, लगभग 40 सालों से बन रहा है इस कंट्री में, लेकिन वो बीज वैज्ञानिक लोग जितना बनाते हैं वो बहुत मात्रा बनाते हैं, पर पूरे कंट्री की जो, पूरे देश की जो बीज की ज़रूरत है उससे पूरी नहीं होती। तो जो सप्लाई और जो डिमांड है या मांग है, उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप था, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है एरोपोनिक्स टेक्निक के आने के बाद। तो उस बीज की जो कमी है बीज की, उसको पूरा करने के लिए दूसरी तकनीकें, जैसे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक और एरोपोनिक्स टेक्निक, इसी तरह से एपिकल रूटेड कटिंग की जो टेक्निक है, जो और भी कई जो नई नई टेक्निक्स को साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया है।
0: मिट्टी की अनुपस्थिति में, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की तकनीक को एरोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। एरोपोनिक खेती का उपयोग कई प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे सब्जियां, फल और फूल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर के प्रमुख डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इनके संस्थान में इस विधि से उच्च गुणवत्ता वाले सीड का उत्पादन किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि इस तकनीक की खासियत ये भी है कि सीड का उत्पादन अन्य विधि के मुकाबले बड़ी तेजी से होता है।
3: सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कि कहेंगे कि वर्ल्ड रिनोन टेक्निक है, एरोपोनिक है। एरोपोनिक में हम जो डिजीज फ्री सीड, बिना बीमारियों के अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसका जो एक खास बात यह है कि वो सीड की जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब वो सीड बढ़ाना, वो बड़ा फास्ट है। एक प्लांट से बहुत सारे ट्यूबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक एरोपोनिक टेक्निक है जो हमारे पूरे कंट्री में अभी फैली हुई है, और जहाँ पे भी एरोपोनिक लग रहा है, लगभग हमारे ही जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू ही वो वहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो ये हमारी एक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स है।
4: आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1,00,000 से 100,00,000 की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।

0: संपूर्ण जानकारी होने से उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने में मदद मिलती है। बता दें आपको कि हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी आधुनिक तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एरोपोनिक तकनीक की बात करें तो इसके बारे में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
1: वैज्ञानिकों का मानना है कि गेहूं और धान जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर जितनी पैदावार होती है, लगभग उसके बराबर ही आलू में प्रति हेक्टेयर बीज कंद की आवश्यकता होती है। वहीं आलू में उत्तम गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता हमेशा ही आवश्यकता से कम रही है। ऐसे में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर आलू के बीज उत्पादन का प्रयास किया जाता रहा है। पारंपरिक विधियों द्वारा आलू के बीज तैयार करने में कई कई वर्षों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में कृषि संस्थानों द्वारा और वैज्ञानिकों की कठिन प्रयासों के फलस्वरूप आलू के बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक तकनीक को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से प्रति पौधा 40 से 50 छोटे कंद मिलते हैं। यह पारंपरिक आलू बीज उत्पादन की विधियों से संख्या में 10 से 12 गुना अधिक होते हैं। इस विधि में बीज कंदों को हर चौथे पांचवे दिन तोड़े जाने के कारण इनके आकार में समानता बनी रहती है। आवश्यकता अनुसार तोड़े जाने वाले आलू का आकार भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इनकी एक समान बिजाई करना भी आसान रहता है। एरोपोनिक में पौधों को हवा में ही उगाया जाता है, इस कारण मृदा जनित रोगों के होने की आशंका नहीं होती। खेत से प्राप्त होने वाले आलू बीज कंदों की अपेक्षा एरोपोनिक से बीज कंदों की प्रति पौधा पैदावार लगभग दुगनी प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता पर्याप्त एवं एक समान होती है। इस विधि में छोटे आकार के बीज आलू कंद होने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना भी सुविधाजनक रहता है। मिट्टी की तुलना में एरोपोनिक विधि में सिर्फ 5 से 10% पानी और 10 से 15% पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस विधि को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी आलू बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रति कंद उत्पादन लागत अन्य विधियों की तुलना में अपेक्षाकृत 5 से 6 गुना कम आती है।
2: एरोपोनिक्स के एक ऐसा तरीका है कि जिसमें जो आलू का किसान है उसको बीज पैदा करने के लिए जो बीज चाहिए, जिसको हम प्री बेसिक सीड बोलते हैं, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में एक साल में एक पौधे से कई सौ पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, और वो जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, ये एरोपोनिक्स की विधि से पहले वो मिट्टी में लगाए जाते थे, और वो जो एक पौधा था वो 6 से लेके 8-9 आलू के कंद पैदा करता है। टिश्यू कल्चर से पैदा किए हुए कंद को बोलते हैं मिनी ट्यूबर, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मिनी ट्यूबर। अब जरूरत ये थी कि वो मिनी ट्यूबर की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए, और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए इस टेक्निक जिसको एरोपोनिक्स बोलते हैं, इसका इजाद हुआ। और वही पौधा जो टिश्यू कल्चर का पौधा था, जब मिट्टी में लगाया जाता था नेट हाउस में, नेट हाउस इसलिए कि उसमें कोई भी कीट पतंगा जैसे कि सफेद मक्खी चेपा ना आ पाए, सफेद मक्खी और चेपा और या दूसरे कीट उसमें वायरस रोग का फैलाव करते हैं, उससे बचने के लिए नेट हाउस में जो पौधे टिश्यू कल्चर के लगाए जाते थे। अब वैज्ञानिक लोगों ने ये सोचा कि उसी पौधे से कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें 6 से लेके 8 की बजाय बहुत ज्यादा मात्रा में कंद बने, जो मिनी ट्यूबर ज्यादा बने। उसी सोच के तहत ये एरोपोनिक्स विधि का विकास हुआ, इसके ऊपर काम किया गया। बेसिकली जो एरोपोनिक्स जो है, ये दो अंग्रेजी का शब्द है एरोपोनिक्स, एरो का मतलब हवा, पोनिक्स का मतलब कोई भी आप पौधे को हवा में उगा रहे हैं। तो एरोपोनिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाउस में, जिसमें के आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, उधर पंखे चल रहे हैं, और मेरे पीछे जो एक पैड सिस्टम है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं।
1: जैसा कि हमने जाना, एरोपोनिक खेती में मिट्टी का उपयोग नहीं होता, इसके बजाय ग्रीन हाउस में तैयार किया जाता है। पौधों की जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, बल्कि वे हवा में ही लटकती हैं। वैज्ञानिकों के सुझाव पर ग्रीन हाउस में एरोपोनिक फार्म तैयार किया जाता है। इसके बुनियादी ढांचे में LED लाइट, पंप, मिस्टिंग नोजल, हाइड्रोपोनिक नेट पॉट और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल होते हैं। इस ढांचे में लगे फसलों पर एक विशेष तरह के नोजल द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का मिश्रण पोषक तत्वों से

0: भरपूर होता है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्व बिल्कुल संतुलन में मिले होते हैं, जो कि आलूओं की बढ़वार में मददगार होते हैं। पानी का ये मिश्रण समय समय पर ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा फसलों पर छिड़के जाते हैं। वहीं ये रोटेशन में भी लगातार बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे लागत में भी कमी आती है।
1: जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एरोपोनिक्स में ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं, ये ऊपर से तो सूर्य की रोशनी लेते हैं ग्रीन हाउस की शीट के बीच में से, और ये फसल जो आप देख रहे हैं इस तरह से है जैसे फैक्ट्री में बनाई गई हुई फसल हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही तंदुरुस्त, बिल्कुल एक तरह के सपनों की फसल इसको कह सकते हैं। अब इसी का जो इसके नीचे कोई मिट्टी नहीं है, जो हम लोग जो रवायती सिस्टम है फसल पैदा करने का, उसमें हमारी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती हैं। यहाँ जो ये जो बॉक्सेस बने हुए, ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें नीचे बिल्कुल मिट्टी नहीं है और जो जड़ें हैं वो हवा में लटक रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो हवा में लटक रही जड़ें हैं उनको कैसे खुराक दी जाती है। आप ये देखें कि ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें जब हमने आलू तोड़ना है तो हम इस फसल को पूरा ऊपर उठा लेते हैं। जिस समय आलू की जो मिनी ट्यूबर की पिकिंग या हार्वेस्टिंग या तुराई होनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस तरह से आलू जड़ें लटक रही हैं हवा में, और इसीलिए इसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। और ये आलू लगे हुए हैं ऊपर, कंद लगे हुए हैं, तो हर तीसरे चौथे दिन इन जो जो कंद है, जैसे आज ये इनकी पिकिंग हो चुकी है, और नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन इनकी पिकिंग, जैसे ये 2 से 3 ग्राम का आलू हो जाता है तो इसकी पिकिंग कर ली जाती है। और नीचे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली चलता है, हर जो सेट टाइम है 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ से खुराक की स्प्रे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे ही टाइम आएगा इसके स्प्रे होने का, ये ऑटोमेटिकली स्प्रे होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आप इस तरह से जड़ों को टच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनका रंग कैसा है, और इनका जो आलू नए बन रहे हैं या कितने बन रहे हैं, ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो एरोपोनिक्स है हवा में जिसका होना हम कह सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब ये आपके सामने जब स्प्रे होने का टाइम हो गया और इसके ऊपर जड़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो वो सॉल्यूशन, वो पानी स्प्रे हो रहा है, जिस पानी में सब तरह के जो पूरे जो जो तत्व है जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, फेरस, मॉलिब्डेनम और जो भी कोई खुराक की जरूरत है उसमें पानी में घोल के रखी जाती है, और ऑटोमेटिकली जो पंप है इसके ऊपर स्प्रे करता है हर 5 से 7 मिनट के बाद। तो इस तरह से ये एरोपोनिक्स किया जाता है, और ये जो क्रांतिकारी जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली इसमें ये जो जो मिनी ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक साल में, जैसे ये यूनिट आप देख पा रहे हैं, तो इस यूनिट में 5 लाख ये मिनी ट्यूबर पैदा किए जा सकते हैं। और इसी तरह जो बने हुए यूनिट हैं अलग अलग, कोई 10 लाख कैपेसिटी का है, कोई 20 लाख कैपेसिटी का, एक साल में प्रोडक्शन का ये सिस्टम है। और ये सब कुछ भारतवर्ष में ये डिज़ाइन तैयार किया गया है, सब कुछ हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके इसकी डिज़ाइनिंग की है, इसके प्रोटोकॉल सेट किए हैं, और इसका कब फसल लगेगी, कौन सी लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी, कितने दिनों बाद आपने कौन सी खुराक इसको देनी है, ये सारा कुछ CPRI में पिछले 10 से 15 सालों में किया गया है।
2: हमारे देश का किसान बहुत जागरूक है, नई मशीनों के उपयोग की बात हो या फिर नई आधुनिक तकनीकों को अपनाने और उनके बारे में सीखने की बात हो, हमारे देश का जो किसान है हमेशा से ही जागरूक रहता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों से एरोपोनिक तकनीक की जानकारी हासिल कर हमारे देश के जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं।
0: भारत विकासशील देश है, हमारी वर्तमान सरकार देश को आगे बढ़ाने और खासकर कृषि के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से काम कर रही है। केंद्र सरकार खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों

0: के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, साथ ही किसान भाइयों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
1: किसान बंधुओं, हमने उधर एरोपोनिक्स में, जो कि ग्रीन हाउस में लगा हुआ पूरा सिस्टम है हवा में आलू पैदा करने का, वहां हमने ये आलू, आपने देखा कि इस तरह से हमने वहां से ये तुड़ाई करते हैं हर तीसरे चौथे दिन वैरायटी के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं कि वहां जब जिस समय तुड़ाई होती है, पिकिंग होती है या हार्वेस्टिंग होती है, उसमें उस समय इनका जो रंग है इस तरह से लगभग सफेद रंग के होते हैं। अब क्या है कि ये जो आलू हैं, जो ये मिनी ट्यूबर्स हैं, ये इसी तरह से स्टोर में नहीं रख सकते 6-7 महीने के लिए 8 महीने के लिए। अब इनका छिलका पकाना पड़ता है, इनकी क्योरिंग करनी पड़ती है, या इनको हम लोग कहें कि इनकी ग्रीनिंग करनी पड़ती है, इनको मजबूत बनाना पड़ता है। उस मजबूती के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम में एक खास मात्रा में खास दिनों के लिए और मतलब ये लाइट देनी पड़ती है, और लाइट में जब ये रखते हैं तो इस तरह से ये आलू जो है इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका छिलका पक जाता है, ये सफेद से या तो हरे रंग के हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा जैसे ये भूरा रंग है, ये डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है, किस्म कौन सी है। तो अब ये जो 8-10 दिन में ये इनका छिलका पक गया है और इनका पूरा अच्छे से ये जो मिनी ट्यूबर ये तैयार है आगे स्टोर में रखने के लिए। अब इस आलू को 2-3 डिग्री वाले स्टोर में यहाँ पे लगभग 7-8 महीने स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे इसको रख दिया जाएगा और उसके बाद फिर इस आलू को निकाल के लगभग 20-25 दिनों तक रखा जाएगा रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे, और फिर इसमें पुंगराव आ जाएगा, इसमें जर्मिनेशन आ जाएगी, और ये जो जर्मिनेशन होने के बाद फिर इसको खेत में बोया जाएगा। खेत में बोने का भी विधि विधान है, एक तकनीकी है CPRI की जिसको बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, मतलब कब बोना, कब पत्ते काटने, कौन कौन सी उसमें दवाई का छिड़काव करना, कैसे फसल को कीट पतंगों से बचाना ताकि उसमें वायरस ना फैले। तो फिर ये जो G0 जिसको बोलते हैं या मिनी ट्यूबर बोलते हैं, इसको खेत में जब लेके जाएंगे तो पहले साल ये होगा खेत में, पहले साल में बोलेंगे Generation 1, मतलब पहली पीढ़ी उसकी फील्ड Generation 1। फिर अगले साल उसका दोबारा से नेक्स्ट अगले साल में जाएगा Generation 2 होगा, फिर Generation 3 होगा, फिर Generation 4 होगा। इस तरह से जो किसान है उसके पास बीज पहुंचने से पहले G1 Generation 1, G2 Generation 2, फिर G3, G4, तो इस तरह से ये आगे सीड को बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का ये है कि ये जो एक दाना है, जब खेत में G1 बनेगा एक के 5-6 बन जाएंगे, जब ये G2 बनेगा तो लगभग आप ये मान के चलिए 50 के करीब बन जाएंगे, जब G3 बनेगा तो 50 को अगर 6 गुना करें तो 300 के करीब बन जाएगा, जब G4 बनेगा तो एक दाने से 1500-1600-1700 दाना बन चुका होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक दाने से G4 के 1600-1700 दाने बन चुके होंगे, जो कि लगभग डेढ़ कट्टे के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन साइज कैसा है। तो इस तरह से ये जो बीज है एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन जो आलू की दुनिया में ला रहा है। जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे उनकी इस विधि के आने से, ये एरोपोनिक की विधि और इसका जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के साथ जो मिलान होने के बाद, जब ये मिनी ट्यूबर की मात्रा इतनी बढ़ रही है बड़ी तेजी से, अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों को पूरा जो बीज की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है, उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी।
0: एरोपोनिक तकनीक नई तकनीकों में से एक है। भारत में एरोपोनिक खेती सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने इस दशक में खेती में क्रांति ला दी है, जिसे लेकर हमारे देश के किसान भाई बेहद उत्साहित हैं। वे इस तकनीक के बारे में जानकर इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि भारत में अभी एरोपोनिक को अपनाने की गति धीमी है, लेकिन किसान इस तकनीक को लेकर बेहद उत्साहित और इसे अपनाकर खेती करने के लिए प्रयासरत हैं।
2: एरोपोनिक सीड सेंटर

0: पोटैटो रिसर्च स्टेशन से मैं गया था, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जे बढ़िया सीड बनाना है तो एरोपोनिक का ही सीड बनाओ। तो मैंने उनसे सीड परचेज किया, तो मैं वो लगाया और तीजा साल हो गया है, तो मैं चौथे साल में उसको बेचूंगा। जो भी फर्ज करो, एक जो बंदा परचेज करेगा तो उसको पता चल जाएगा थानू कि इसकी कितनी ही यील्ड है।
1: एरोपोनिक खेती की तकनीक अपनी संभावनाओं की वजह से दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। भारत देश में भी इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और किसान भी इससे अवगत हो रहे हैं। जैसा कि हमारे देश में भूमि की कमी है और इस कमी को देखते हुए एरोपोनिक तकनीक में खेती का भविष्य नजर आ रहा है। इस तकनीक से जमीन की कमी को पूरा किया जा सकता है, साथ ही उपज भी कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। एरोपोनिक तकनीक की मदद से कृषि संस्थान आलू के स्वस्थ और अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान इस तकनीक से कम लागत में आलू की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं।
2: तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी जब दी जाती है किसी किसान को या किसी कंपनी को, तो उसमें लगभग एक साल से लेकर सवा साल तक जो CPRI की वैज्ञानिकों की टीम है उस कंपनी के साथ या किसान के साथ काम करती है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बीज की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं और आलू की बीज की दुनिया में जो आ रही क्रांति है उस क्रांति का आप हिस्सा बन सकते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने एरोपोनिक खेती जो एक किस्म का नया आविष्कार भी है और किस तरीके से इस विधि का उपयोग करके हम अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, ये बहुत जानना बहुत आवश्यक था। सो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना, आशा करते हैं कि हमारे किसान साथी, क्योंकि बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है और साथ साथ में गवर्नमेंट के जो अधिकारी रहते हैं, सरकारी विभाग के अधिकारी रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, उनसे भी जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए। और चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा ताकि तत्व के बारे में पता चले कि किस तत्व की हमारे खेत में कमी है। साथ साथ में गर्मियों की गहरी जुताई पर भी हमें जोर देना चाहिए और इन नई नई पद्धतियों के बारे में सुनना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली।

अथियो विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लें। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों दिन नकृत भय अपन ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं भोले राम कुशवाहा जी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत हैं भजन को।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भुले राम कुशवा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनते हैं फिर से नहीं कि गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिजनार सतावे के मैया मुए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारो भजन अपन अब आगे सुनवे को जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गायब है स्वर में एक अच्छा भजन को, के मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत को।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजावे रे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीका से ये गीत को गा के सुनाओ है। अब यही गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोले राम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

0: अरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उमर मोरी बारी। देखो कितनों प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुनाओ है, इमें अपन सब जन ने सुनो है, ये और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक के संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जाबे को समय हो रहा है, सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे जब तक के लाने।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों आप सब जन को जे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपो ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपो ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन हो गए को समय हो गए है। नमस्कार।
2: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

0: होवे को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।